0: एक बात बोलो, श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: रात महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका गोरछ गरुन र दानवहरू नागमा रावण नासिका सञ्चल भैगुमनि दासिन्द्रियहरू तिम्रा भजनमा भोलोस् सरासु

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: के तपाईँ चरीकोट काठमाडौँ यात्रा

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम रेडियो थोपलो 7 MHz बाट म पदे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 14 तारीख श्रावण 29 गते शुक्रवार द्वितीय तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षण कल्पय भरी।

नगरेर पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेर पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा

कुरे दसैता वायु शरी हुन गए हनुमंत सैता अकस्मर गरी कुरेर हनुमान उड़ते किया काशमा सीताजी कन भेटी फर्कल घेर रामचंद्र का पासमा पुग्नी अकल बल

0: Ivaiho Matsumarnalai, Tarlaina Kalaki Gari Malai, Sadbarbati Pae Garula, Upae Kainavai, Avache Marula. Hasta la Niva.
1: पूर्वक राजे पालन करते हरि चंद्र जी छोरा छोरी को नैना भईकन थिए अत्यंत दीदार रचे जाइ आसमा बसी त मुनिका सम्मा सुधाए पनि